0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुडोका 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।
2: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So, after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So, India took the first set 25-22, followed by a 25-19 win in the second, before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool match is against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our unbeaten start.
1: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था, महिलाओं की बात करते हैं।

0: की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। निर्णायक मुकाबले में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। ऐसे में जोशना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।
1: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place in the quarterfinals of the men's shortboard event. Kishore was in action in the round of 16 against China and produced a strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition with the quarterfinal stage still to come.
0: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी। देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो टीम इवेंट था उसमें पदक से चूक गई। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के टीम इवेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा और पदक से चूक गया। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येंग चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा। मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही। राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया। अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी।
1: That's how we also talk about some news that we have from women's sepak takraw, where India have gone down to Japan in their latest Group B encounter. So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match. The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan. But that's not all we have right now. There is some very interesting action coming to you from archery as well, where in the men's compound individual event, Ganesh Maniratnam has booked his place in the quarterfinals, defeating fellow Indian archer Sahil Jadhav in a thrilling pre-quarterfinal encounter. It was a very close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the all Indian battle by just 1 point. Now we also look ahead, because there is more action coming in from the women's compound individual event, with Pritika, Chikita and Jyoti Surekha set to begin their round of 32 and round of 16 matches at 9:45.
0: Din ki jab shuruaat ho rahi hai to bhartiye jo team भारतीय खिलाड़ियों जो मेडल जीते उसके बारे में बता देते हैं। भारत ने अब तक 37 पदक जीत लिए हैं एशियन गेम्स में, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर, 17 कांस्य समेत कुल 37 पदक हैं। अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है हम जरूर आपको बताएंगे ठीक 10:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 107 FM पर। और आपके साथ है आपका दोस्त आरजे अंकित। और दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप, और जब भी हम आते हैं लाते हैं एक विषय, और दोस्तों मैं करता हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें उसी विषय पर। पहले तो आप अपना नंबर नोट कर लीजिए, हमारा फोन नंबर है 2213-1341 पर। और दोस्तों इस नंबर पर आपको करना है डायल और करना है मुझसे बातें। जब भी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जैसे टॉपिक लाता हूँ, और आज मैं बात करने वाला हूँ घूमने पर। जी हाँ दोस्तों, घूमने फिरने पर। और हमें घूमना फिरना तो काफ़ी पसंद आता है, मुझे आपको और हम सबको। घूमने के नाम से ही जो है चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कराहट आ जाती है और मन में एक एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन घूमने के बाद मैं ऐसे नहीं करने वाला कि आप कहाँ घूमने वाले हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी दोस्तों हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, या अपनी कोई अच्छी फेवरेट वेब सीरीज देखते हैं, या कोई टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो पूरे जो एक्टर एक्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं अच्छी लोकेशन पे शूटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई किसी भी शहर पे हो, किसी भी देश में हो। और जब भी हम उन पिक्चरों को देखते हैं, उन फिल्मों को देखते हैं, हमारे मन में भी एक ऐसी इच्छा जाग जाती, ऐसी चाह जाग जाती थी कि काश मैं भी उस जगह पर जा पाऊँ, या शायद मैं भी उस जगह पर रहता तो मैं भी यहाँ पर जाके फोटो क्लिक करता, वीडियोस बनाता, घूमता उस जगह पर। तो क्या आपके मन में भी ऐसी कोई इच्छा जागी है कोई फिल्म देख के, जिस फिल्म को आपने देखा और वहाँ पर हीरो हीरोइन घूम रहे हो, फिर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, आपने सोचा काश मैं भी इस जगह पर जाऊँ और फोटोज क्लिक करो। ऐसी कोई भी पिक्चर हो जहाँ पर आपके जहन में ऐसी कोई बात आ रही हो, या आप ऐसे सोच रहे हो, या आपके जो भी आपने सोचा हो, आप गए भी हो या फिर नहीं गए हो, या प्लान बना रहे हो वहाँ जाने के, तो आइए हमसे शेयर करिए। नंबर एक बार फिर से मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 पर आइए और देखते हैं कौन आता है हमारे फ़ोन लाइन में। तब तक स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

0: फिल्म बचना है हसीनों से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत और हमारे साथ एक दोस्त आ चुके हैं फोन लाइन पे, आइए कर लेते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, कौन है आप फोन लाइन पे?
1: शुभजीत बोल रहा हूँ। बिल्कुल जैसे
2: शुभजीत बताओ क्या कहना चाहते हैं आज?
1: मुझे लगता है कि बचपन से ही जैसे कि जैसे हिंदी फिल्म में हम देख चुके हैं यश चोपड़ा, तो जो मेन लोकेशन हमेशा रहता था कि यश चोपड़ा जी हमेशा वही लोकेशन में शूटिंग करना ज्यादा पसंद करते थे वो है स्विट्जरलैंड। जितने भी फिल्में बनी है उनका मैक्सिमम फिल्में स्विट्जरलैंड में हुआ है। और हम लोग को बहुत साल पहले जब ये यूट्यूब नहीं था, कुछ माध्यम नहीं था जहां पर लोग का एक्सपोजर हो विदेश में जगह में, तो यही फिल्में हम लोग को हम लोग का ख्वाब देता था और हम लोग सोचते थे कि ऐसी जगह भी हो सकती है। और तब से मुझे स्विट्जरलैंड जाने का बहुत मन है क्योंकि मुझे लगता है ये इतना ऐसा हमारे देश में भी ऐसी जगह है जो हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं कश्मीर को। कश्मीर तो एक जगह है और यश चोपड़ा जी ने भी ऐसी जगह में शूटिंग किए हैं, लेकिन अगर इंडिया के बाहर हो तो स्विट्जरलैंड जो मुझे बहुत प्रभावित किया। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ जाने के लिए मेन जो चीज है वो है पानी, बिकॉज यूरोप बहुत कॉस्टली जगह है, तो वो तो ख्वाब है। और जब हम अभी ऐसा इंटरनेट पे देखते हैं स्विट्जरलैंड को, जब वो जो रेड ट्रेन, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, जो ट्रेन राइड होता है स्विट्जरलैंड का, अच्छा है तो सपना। और एक फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि ने मुझे और एक देश के बारे में बहुत कुछ दिखाया, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में स्पेन, जो बार्सिलोना कोस्टारिका और जो जो भी था, वो एक ऐसा था कि ऐसा लगा कि हम लोग दोस्त लोग मिलके एक रोड ट्रिप बना ले, क्योंकि जिस तरह से फिल्म किया गया था उसका पिक्चराइजेशन, तो वहां पर टोमेटोना फेस्टिवल जो दिखाया वो भी क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा फेस्टिवल भी हो सकता है टमाटर को लेकर। और ऐसे मुझे और एक इंडिया में

0: बताया कि कश्मीर को छोड़ के मुझे भी याद नहीं पड़ा कौन सा फिल्म जहां पर मेघालय को दिखाया गया।
1: अच्छा।
0: तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर है वो इतना अलग है, हम लोग के खुद के देश के होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं विदेश में चले गए। क्योंकि मैं इस साल ही फर्स्ट मार्च अप्रैल में अरुणाचल गया था, तो वहां के पहाड़, वहां के जो एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत। और वहां का सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वहां के लोगों की सिविक सेंस इतनी अच्छी थी, आप वहां पर रस्ते में एक टुकड़ा पेपर भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत साफ सुथरा। और वो लोग का, और जब हम लोग ट्रैफिक में रहते थे वहां पर, कि आप देखेंगे एकदम लाइन लगा के, क्यू लगा के ट्रैफिक है, कोई ओवरटेक करने वाला है नहीं, और सब लोग शांति से झगड़ा वगड़ा। और नॉर्थ ईस्ट लोगों का एक इतना खासियत चीज है जो मुझे सिक्किम दार्जिलिंग में भी मिला, वो है लोगों की जो मिठास, बोलने की मिठास, इतना पीसफुल। और कभी भी झगड़ा में तो करने नहीं देखता, मैं चिल्ला चिल्ली तो होता ही नहीं वहां। तो इतना अच्छा लगता है, वी आर सो प्राउड दैट वी हैव अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री जो नॉर्थ ईस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दो तीन जगह है जो मैं जाना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर, मैं चाहता हूँ आप हर जगह जाएं जितनी पिक्चर दिखाएं।
0: जी, और ट्रैवलिंग एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है कि इंसान को कभी भी, अगर मतलब कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं है कि विदेश में ही जाना पड़े। हम लोग का भारतवर्ष में इतने अच्छी अच्छी जगह है,
1: बहुत सुंदर सुंदर जगह है,
0: और ट्रैवलिंग हम लोग को हेल्प भी करता है बोथ फिजिकली और मेंटली। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कभी किसी का बीमार हो, कुछ भी हो, आप एक बार कहीं घूम आओ, तो बहुत हेल्प करता है माइंड को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सुनील,
0: थैंक यू, थैंक यू,
2: और बताने के लिए अपनी जो बातें हैं हमसे शेयर करने के लिए। और मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमने जाए। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पेंगोंग लेक जो लद्दाख के कई लोगों के लिए थ्री इडियट्स फिल्म के दृश्य को दोहराया बिना अधूरी लगती है, पेरिस की यात्रा एमिली इन पेरिस से प्रेरित एक तस्वीर है और हैशटैग के बिना पूरी नहीं हो सकती। कई फिल्म प्रेमियों के लिए मनाली का मतलब है बनी। जी हाँ, बनी, ये जवानी है दीवानी और उसकी शरारतें हैं। चाहे वो ग्रीस में शाहरुख खान का रानी मुखर्जी के साथ नृत्य हो या दार्जिलिंग की पृष्ठभूमि वाली फिल्म बर्फी। फिल्में और टीवी शो अक्सर किसी स्थान को पर्दे पर अच्छी तरह से दर्शाने का हमारा पहला जरिया होता है। जहां टेड लासो आपको लंदन के कुछ अंश दिखा सकते हैं, वहीं द व्हाइट लोटस के सिलसिले को एक बिल्कुल नए दर्शक वर्ग के सामने पेश किया है। दिल चाहता है मैं गोवा के चापोरा किले से लेकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में स्पेन या जवानी है दीवानी में उदयपुर और मनाली और दिल्ली सिक्स में पुरानी दिल्ली की गलियों तक यात्रियों ने अक्सर फिल्मों और शो के इर्द गिर्द अपनी यात्रा की योजना बनाई है। आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली सिक्स की बात हो रही, तो आइए सुनते हैं दिल्ली सिक्स का यह गीत और देखते हैं अगला हमारे साथ दोस्त कौन जुड़ते हैं और बातें करते हैं अपने इस बारे में।

0: फिल्म दिल्ली सिक्स से दोस्तों सुन रहे थे यार रहमान भैया दयाल की आवाज में ये ट्रैक। और ये ट्रैक सुनते सुनते हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग अंकित जी। मैं मुनीरुद्दीन बात कर रहा हूँ दक्षिण शाखा इलाहाबाद से।
2: मुनीरुद्दीन जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं आज के इस विषय पर।
1: बहुत सारे फिल्म है जो फॉरेन कंट्री में शूटिंग हुआ, उनमें से मेरा याद में जो है जैसा कि कुछ कुछ होता है फिल्म जो स्कॉटलैंड में शूट हुआ था, उसका जो टाइटल ट्रैक है तुम पास आओ, एक अच्छा सा शूटिंग हुआ था स्कॉटलैंड में। और बाद में 1997 का परदेश जो फिल्म है वो मार्टिन जुक्रास्ट लॉस एंजल्स में शूट हुआ था, उसका एक गाना है बहुत ही हार्ट टच गाना है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप चुप के। हम दिल दे चुके सनम जो हंगेरी का बुदापेस्ट में शूट हुआ था, उसका जो गाना है तड़प तड़प के दिल से बहुत ही अच्छा गाना है। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ जन्म समझा करो फिल्म से न्यूजीलैंड का जो शूट हुआ, उसका जो टाइटल ट्रैक है जन्म समझा करो, वो भी बहुत अच्छा लगा है। और उसी सब जगह से मैं मन करता हूँ जाने का पूजा का टाइम से। और आपसे आज सभी श्रोताओं को पूजा का शुभकामना देना चाहता हूँ।
0: जुड़ने के लिए और रहने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है। और दोस्तों इस वर्ष के प्रारंभ में मुंबई पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित 8वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन में फिल्म पर्यटन भारत की पर्यटन रणनीति और गंतव्य ब्रांडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। भारत सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक वीडियो संदेश में कहा, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कोई स्थान केवल भूगोल नहीं रह जाता, ये एक आकांक्षा, स्मृति और एक सपना बन जाता।

मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी कोई फेवरेट फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या कोई टीवी सीरीज देखते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई आप तो शूटिंग लोकेशन देखते हैं जहां पर एक्टर एक्ट्रेस वहां पर शूट कर रहे हों, रोमांस कर रहे हैं, और आपके मन में भी इच्छा जाग जाती है कि काश मैं भी उस जगह जा पाता। और फिर आप ऐसा प्लान बनाते हैं कि आप वहां पहुंच भी जाते हैं और वहां जाके ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं, वीडियोज बनाते हैं। तो ऐसी कोई जगह जहां पर आपका जाने का मन हो वो फिल्म देखकर, तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।

0: फिल्म लक्ष्य से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत, और हमारे साथ और एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: नमस्कार दादा।
2: नमस्कार, कौन है दादा फोन लाइन पे?
1: मैं शोविक शाकर बोल रहा हूँ कसबर।
2: शोविक, क्या कहना चाहते हैं आज के इस विषय पर?
1: बहुत अच्छा सा एक टॉपिक लिया है दादा।
2: थैंक यू
1: दादा। मैं जो बोलूंगा वो मैं जो दिल से जब फिल्म देखा था वहाँ पर केड़ा लाखा जो सीन जो देखा था वहाँ पर जो शाहरुख खान और जो प्रीति जिंटा जब दिया चले नैनो चले जो गान गा रहा था वो बोट में जब गान गा रहा था बहुत अच्छा सा लगा था वहाँ का जो सीन। दूसरी जो बोलूंगा 38 मूवी का वो पेंगोंग जो लेक जो था बहुत अच्छा सा, मैंने एक लेक जो इतना अच्छा सा हुआ था। उसके बाद में ले वहाँ पर लादक में भी तो गया था उसके साथ, वहाँ पर बहुत अच्छा सा सीन सीनरी इतना अच्छा सा
2: लगा था। मैं भी गया था, बहुत सुंदर जगह
1: एकदम। जो है जबू मेट का जो था वो मनाली का जो था रोहतांग पास जो था ना वहाँ पर बर्फ का जो सीन जो था दो धार में बर्फ का बर्फ वो भी बहुत अच्छा सा लगा था। दोस्त के साथ दोस्त का जो सीन बोलूंगा वो दिल चाहता है वहाँ पर जो गोवा का जो सीन है बहुत अच्छा था। वहाँ पर जो तीन दोस्त मिलकर आमिर खान बोलिए जो एक फोर्ट का ऊपर जो अड्डा मार रहा था बहुत अच्छा सा लगा था।

0: 인조 다 라스트 보는가 로자 로자님까지 가슴이까지 쓰인데 그래서 나 떠서 나갔다. 무지코 나가도 와파에 가운가 가운가. 아직 아 가슴이께 오죠 네호아요. 가슴이라 구아. 나 아샤 카르타운 카비나 카비 호 자에가.
1: 빌쿨 이시 사르가요.
0: 에그돔. 근데 에크 메 볼룽가. 조 마나니 볼리에 바히마탈 프라데시 볼리에. 야파 로 की साइड में ना इतना अच्छा सा पुरस्कार परिचन रहता है दादा बहुत अच्छा लगता है सिक्किम में भी गया था बोलिए तो वहाँ पर इतना अच्छा सा लगता है परिवेश परिचन जो इतना अच्छा सा हुआ बहुत अच्छा सा लगा था इसलिए मैं बोलूंगा हमारे यहाँ पर भी जो रास्ता भी है वहाँ पर तो हम लोग के यहाँ पर के लोग तो वहाँ पर घूमने जाता है वहाँ पर हम इतना अच्छा सा पुरस्कार परिचन रहते हैं जो भी काम खाते पैकेट में एकदम नहीं फैलता है हम यहाँ पर देखते जहाँ सब फूल देता है मैं सोच रहा था यहाँ पर भी नियम होना चाहिए हमको मन में नहीं लेना चाहिए यहाँ पर भी हम परिष्कार परीक्षण हो
1: रहे हैं
0: एकदम
1: दादा ये मैं बोलूंगा थैंक यू सर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कौन कौन सी जगह आप प्लान कर रहे हैं घूमने की। एनीवेज दोस्तों अभी 10:28 AM हो चुका और आपको ये बता दूं कि 10:30 AM यानी 10:30 AM पे मैं आपको सीधे लिए चलूँगा दिल्ली जहाँ पर आप सुनेंगे 5 मिनट के लिए एशियन गेम्स पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों एशियन गेम्स पर अपडेट सुनना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 10:30 से 10:35 तक आप अपडेट सुनेंगे और फिर वापस मैं लौटूंगा 10:35 पर यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में यानी नॉनस्टॉप गपशप में 107 FM रेनबो पर जहाँ पर घूमने फिरने का सिलसिला वापस से मैं करूँगा जारी। और घूमने फिरने की बात हो रही है दोस्तों और जैसा कि शौविक ने भी कहा कि लद्दाख के पेंगोंग लेक में थ्री इडियट्स से जुड़ गई है। वहाँ गोवा का चुपारा किला दिल चाहता से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड के कई स्थान लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट के पर्यटन स्थलों से हिस्सा बन गए। इन मामलों में स्थान सिर्फ एक पृष्ठभूमि बनकर नहीं रह जाता है बल्कि कहानी की पहचान का हिस्सा भी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों सीधे आपको लिए चलता हूँ दिल्ली और हम सुनेंगे वहां से एशियन गेम्स का अपडेट। मिलता हूं जल्दी आप लोग।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस अपडेट में। एशियन गेम 2026 के जो अब तक के ताज़ा नतीजे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी भी खबर आई भारत ने मेडल पक्का कर लिया। जी हाँ मुक्केबाजी की बात कर रहा हूँ मैं। मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह की वो मुक्केबाज है धाकड़ मुक्केबाज है उनका वही खेल देखने को मिला। जी हाँ ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है। लवलीना ने मुकाबले के तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। तीनों राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा। इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में। अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी।
4: And now there is big news from cricket as well with Team India through to the semi-finals of the Asian Games Men's T20 tournament with a bowl without being bowled at all. India's quarter-final against Afghanistan was abandoned without a toss because of a persistent rain. But here is the crucial part of the story. India's higher ICC T20 ranking became the deciding factor. And under the Asian Games tournament regulations, when a quarter-final is washed out without a result, the higher ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
3: जी बिल्कुल भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। खैर बात करते हैं यहाँ पर स्क्वैश की जहाँ पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी। जी हाँ पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूरज चंद्रवीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल

0: कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीत कर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है। पहले मुकाबले में सूर्य चंद्र ने चीन के शाओकिन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद वीर चोट्रानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा। उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी। और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोऊ को, जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वेलन ने यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी। इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल ए में अपने अभियान को और मजबूती दी।
1: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event, where India had two strong contenders in action today and Chikita Taniparthi has saved. So we began the round of 32 while talking about Jyoti Surekha Venam, who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16. But the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yun-soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Taniparthi, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
0: बात शूटिंग की करते हैं। शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत की मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है। वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है। वही काइनन चेन्नई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर। यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है।
1: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Ballara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo Min.
0: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी, फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: और दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। आज अंकिता आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर, यानी 107 एफएम रेनबो पर। 10:36 AM हो चुका है दोस्तों, रहने वाला हूँ 11 बजे तक आपके साथ। और आपको बता दूं कि आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी फिल्मों के बारे में जिस फिल्मों को देख कर आपको ऐसा लगा हो कि काश मैं भी उस लोकेशन पे जा पाता, काश मैं भी उस लोकेशन पे फोटोज क्लिक कर पाता, वीडियोस क्लिक कर पाता जहाँ पर वो एक्टर एक्ट्रेस एक्टिंग कर रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो। तो आपका भी मन में कभी आया होगा कि मैं भी उस जगह पे जाके कभी घूम पाऊँ। और ऐसी जगहों के बारे में आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। और हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 पर, यहाँ पर करिए डायल, करिए हमसे बातें और देखते हैं आप में से कौन कौन क्या विचार रखते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं, आइए कर लेते हैं उनसे बात। हेलो
4: जी, नमस्कार। गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अंकित जी।
5: गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे फोन पे?
4: जी, मैं मोहम्मद नासिर गड़ियाघाटा से। सर,
5: नासिर जी बताइए, आप कहाँ घूमना चाहते हैं?
4: जी सर, मेरा घूमने का जो शौक है वो जिसे हम दुनिया का जन्नत कहते हैं,

0: और जगह का नाम है वादी कश्मीर। यहाँ सर बहुत सारी फिल्में का शूटिंग किया गया है, जिसमें बेमिसाल है, अगर पुरानी फिल्म देखी जाए तो आरजू है, नाने कितनी फिल्में हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत सारे फिल्मों का जो तो शूटिंग वहाँ किया गया कश्मीर के अंदर में, और बहुत सारे ऐसे लोकेशन को, बहुत सारे ऐसे दृश्य को दिखाया गया है, जिस दृश्य को देखने के बाद मन में इमिडिएटली ये ख्याल आता है काश मैं इस लोकेशन पर भी जा पाऊँ और उस मिशन पर भी जा करके अपना पिक्चर क्लिक कर पाऊँ और फैमिली के साथ घूम पाऊँ। तो मेरा ये सपना है सर, मेरा ये ड्रीम है, अगर ऊपर वाला कभी भी मुझे मौका दे तो मैं अपने फैमिली के साथ उस लोकेशन को अपने नजरों से देख पाऊँ, जिसे हम दुनिया का जन्नत कहते हैं, वादिया कश्मीर, सारी खूबसूरती को मैं अपने मोबाइल के कैमरे में समेट के ला
1: सकूँ। थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे और बताने के लिए कि कश्मीर आपको काफ़ी पसंद आया और आप जाना चाहते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी सूचना भी आपको देनी है मुझे, और वो है कि अध्यक्ष RMS SB मंडल की अध्यक्षता में RMS SB मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SB मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा 4th मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायत समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेज सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdu@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक RMS SB मंडल हावड़ा 7111101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपने ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस VC का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामले जैसे उत्तराधिकारी आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जरूरी सूचना। अब वापस से बढ़ते कार्यक्रम की और बता दूं कि सिनेमा और टेलीविजन में किसी स्थान को किसी के वहां जाने से बहुत पहले ही परिचित महसूस कराने की अनूठी क्षमता होती है। हमने भारत में पिछले कुछ वर्षों में इसका उदाहरण देखा, जैसे कि दिल चाहता है, सलाम नमस्ते और बचना है हसीनों जैसी फिल्मों ने ऑस्ट्रेलिया के शहरों और परिदृश्यों के भारतीय दर्शकों के घरों और कल्याणों तक पहुंचाया है। ऐसे टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया के भारत और खाड़ी क्षेत्र के कंट्री मैनेजर बताते हैं दोस्तों कि हम टेलीविजन स्क्रीन की शक्ति में शुरू से ही विश्वास रखते हैं, जिसमें लोकप्रिय टेलीविजन शो बड़े अच्छे लगते हैं, जैकी के साथ हमारा जुड़ाव भी शामिल है। ये जुड़ाव महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोरंजन का प्रभाव मूल प्रसारण या थिएटर रिलीज से कहीं आगे तक जा सकता है। एक फिल्म पर किस स्थान से परिचित करा सकता है और वह छवियां और भावनाएं उनके साथ तब तक बनी रहती है तब तक वे यात्रा करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं।

फिल्म कल हूँ ना उसे दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और दोस्तों अभी एक दोस्त जुड़ी थी हमारे साथ सुप्रिया, और वो कह रही थी कि वो फिल्म नदिया के पार के चौबेपुर और बलिहार वाले शूट लोकेशन में जाना चाहती है और वहाँ पे ढेर सारे फोटोज जो है क्लिक करना चाहती है। और दोस्तों स्क्रीन तेजी से इस बात की निर्धारित कर रही है कि लोग कहाँ यात्रा करते हैं। कई यात्री अपनी यात्रा की योजना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी खास जगह पर फिल्माए गए दृश्य या गाने के जादू को देखना या फिर से जीना चाहते हैं। स्क्रीनें लोगों के यात्रा करने के स्थानों को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। पिछले साल जारी ग्रेट इंडियन ट्रैवल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर के शहरों के लिए बुकिंग में साल दर साल तेजी से वृद्धि हुई है। दीमापुर में 77%, अगरतला में 48% और गुवाहाटी और इम्फॉल में 44% की वृद्धि हुई है। द फैमिली मैन जैसे शो ने इन स्थलों को सुर्खियों में लाने में मदद की है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही देख रहे हैं। द व्हाइट लोटस, द ओडिसी और कॉकटेल 2 में दिखाया गया सिसिली इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कॉकटेल 2 की रिलीज के बाद से ही इटली और इटली के लिए बुकिंग के साल दर साल 48 की वृद्धि हुई है, 48% की। फिल्मों में दिखाए गए स्थलों पर जाने वाले लोग केवल भौगोलिक दृश्य से कई अधिक की तलाश में रहते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स LTO के अध्यक्ष रवि गोसाई कहते हैं वे अपने पसंदीदा दृश्य और पृष्ठभूमि को फिर से जीवित करना चाहते हैं, स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं, भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और फिल्म के निर्माण से संबंधित हर विवरण को इस स्थान पर देखना चाहते हैं।

0: फिल्म चलते चलते से दोस्तों आप सुन रहे थे ये ट्रैक। आइए एक दोस्त जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे भी कर लेते हैं बात।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
2: হ্যাঁ দাদা,
1: আমি পায়েল বলছিলাম, বেলঘরিয়া থেকে। হ্যাঁ পায়েল, তুমি কোথায় ঘুরতে ইচ্ছুক আছো?
2: আচ্ছা না দাদা, ফার্স্টে আমি যেটা বলবো, ওই জায়গা আমি যাইনি কোনোদিন, বাট কাশ্মীর।
1: হ্যাঁ
2: এই জায়গাটাই আমি যেতে
1: চাই। কোন কোন জায়গাটা জায়গাটা
2: সেভাবে আলাদা করে কোনো নাম বলছি না, বাট পুরো জায়গাটাই বেশ ভালো লাগছে।
1: হুম হুম, ওকে পায়েল,
0: ओके थैंक यू आने के लिए मेरे साथ पायल जुड़ने के लिए। और पायल को जो कश्मीर की शूट लोकेशन है वहाँ पे काफ़ी घूमने की इच्छा, जाने की इच्छा है। और दोस्तों बात हो रही है घूमने फिरने की, और भारत के वे पर्यटन स्थल जिनकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा कुछ खास फिल्मों की वजह से है, जैसे कि लद्दाख, खासकर पेंगोंग झील। 2009 में फिल्म थ्री इडियट्स के रिलीज होने से पहले इस झील पर हर मौसम में कुछ 100 पर्यटक ही आते थे। अब ये भारतीय घरेलू पर्यटन में सबसे ज़्यादा फोटो खींचे जाने वाले स्थानों में से एक है, जिसका मुख्य कारण फिल्म का आखिरी दृश्य है। वहाँ के विक्रेता आज भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया स्कूटर और पीला रेनकोट किराए पर देते हैं। स्पेन फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के जरिए स्पेनिश पर्यटन जगत में एक मिसाल बन गया है कि कैसे एक फिल्म ने पूरे पर्यटन बाजार के लिए पर्यटन स्थल की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। कश्मीर, गोवा और राजस्थान ये स्थान किसी एक फिल्म से नहीं बल्कि दशकों से बॉलीवुड के रोमांस और ड्रामा के लिए डिफॉल्ट पृष्ठभूमि रहे, और इसका परिणाम सामूहिक प्रभाव है। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक स्टूडियो है, कोई वास्तविक स्थान नहीं, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ अवधारणा कितनी आगे जा सकती है। अकेले बाहुबली के सेट ही एक सशुल्क पर्यटक आकर्षण में बदल गए हैं।

फिल्म तमाशा से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज में। ये ट्रैक बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी ट्रैक की तरफ और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीक की स्टार्टिंग हो गई दोस्तों, तो मन लगा के काम करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, बस और क्या। इसी संदेश के साथ हमारा कार्यक्रम करता हूँ ये समाप्त और बढ़ चलते हैं हमारे कार्यक्रम के लास्ट ट्रैक की तरफ। और सबसे यादगार चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा कि घूमना मत छोड़िएगा, घूमते फिरते रहिएगा जिंदगी भर।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Welcome back to the Asian Games live update where the nerves are high and the latest action has kept us right on the edge of our seats. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest twists, turns and medal moments from Asian Games. And what a moment we have to begin with. India has struck silver in shooting and it is Aisha Singh who has done it for us. What a spectacular contest this has been. Shoot off after shoot off, the pressure kept mounting, the margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
2: बिल्कुल विदुषी, बताना चाहूंगा, नर्व्स को बिल्कुल दिलों की धड़कन को रोक देने वाला मुकाबला था। असली शूटिंग, जबरदस्त शूटिंग देखने को मिली और ईशा सिंह ने क्या अपने नफ्स पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वक्त लग रहा था तीसरे पर आएंगी और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जियू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था जो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूट ऑफ के बाद हराया। दूसरे शूट ऑफ में ईशा 3-2 से आगे थी लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूट ऑफ में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
1: What a spectacular display of sport that was, you know, the immense pressure, margins, my God. It was truly a sight of delight. And that wonderful performance in shooting fresh in our mind. Let's also tell you about another medal for India from the Kurash Arena, where Pinky Bulhara secured bronze in the women's under 78 kilogram category. She was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing a medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is the only India's third ever Asian Games medal in this sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at the 2018 Asian Games, while at the 22 ones her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. And it is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
2: बिल्कुल, मुक्केबाजी से भी सुबह अच्छी खबर आई। जैसा कि कल हमने देखा, 3 भारतीय मुक्केबाज उन्होंने फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। हालांकि सेमीफाइनल में वो खिलाड़ी जीतते हैं तो पदक का रंग और अच्छा होगा, लेकिन आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, जिनसे उम्मीद भी थी कोई शानदार प्रदर्शन करेंगी और अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। 5-0 से अपना जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां पर जो दक्षिण कोरिया की मुक्केबाज थी स्वेन सोइंग को हराकर जीत दर्ज कर ली, उन्होंने एक और पदक पक्का कर लिया। हालांकि जिस तरह से शूटिंग में हमने देखा पदक आया, उसके बाद एक और मेडल आया जैसा विदुषी ने बताया, अब यहां पर मुक्केबाजी से एक और पदक पक्का हो गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, शाम तक मुकाबला पहुंचेगा, एशियन गेम्स के मैच खेले जाएंगे, भारत की और स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी।
1: एब्सोल्युटली, इट हैज बीन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉर्निंग फॉर द इंडियन कंटिंजेंट सो फार। एंड व्हाइल वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू अ क्वाइट अपडेट फ्रॉम टेनिस एज वेल, वेयर इंडियाज वुमेन्स डबल्स कैंपेन हैज केम टू एन एंड। रुतुजा एंड अंकिता, द 8th सीडेड इंडियन पेयर, फेस्ड कजाकिस्तान इन द फर्स्ट राउंड। इट वॉज रियली क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट। इंडिया टुक द ओपनिंग सेट 7-5, बट कजाकिस्तान fought back strongly to take the second set 6-3. That meant the match went into a deciding match tiebreaker, and unfortunately for India, Kazakhstan held their nerve to win 10-5. So the final score reads as 7-5, 3-6, 5-10. And for now, keep listening to Akashwani for the latest updates from the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi, and we will be back with more thrilling action in our next early update. Thank you.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: गाने बाजू ओनली रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे सारा दिन
4: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 এফএম রেইনবোতে। গানদরিয়া গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Welcome back to your Asian Games live update where India has already given us some wonderful reasons to celebrate this morning. I am Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest action, medal moments and twists and turns from the games. And what a morning it has been for India. We have seen Aisha Singh deliver a brilliant silver medal in shooting followed by Pinky Balhara adding a bronze in courage, two more podium finishes, two more moments of pride. And the Indian medal tally continues to grow. It has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our athletes. Shahid, let's begin by taking stock of where India stands right now. What does the medal tally look like?
2: बिल्कुल, भारत 12वें स्थान पर है। भारत ने 4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज समेत 39 पदक जीते। इन 39 पदक में एथलेटिक्स ने 13 पदक दिए जबकि शूटिंग ने 12 पदक दिए, यानी 12 13 25 पदक इन सिर्फ दो खेलों से भारत को मिले हैं। जबकि अगर बता दें, ओवरऑल बताएं, सबसे ऊपर चीन अभी भी बना हुआ है, 125 गोल्ड, 51 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज समेत 220 पदक जीते। वहीं जापान 39 गोल्ड, 64 सिल्वर, 61 ब्रॉन्ज समेत 164 पदक जीते हैं। वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक जीते। कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसके 10 गोल्ड थे, अब 9 गोल्ड हो गए। कैसे हो गए बताता हूं आपको। हालांकि आमतौर से देखा जाता है, हर देश जब मुकाबला जीतता है उसकी संख्या, जो उसके पदकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके घट गए। कैसे घटे बता देता हूं आपको। कजाकिस्तान की यास्मीन टोखानबोवा का महिला मैराथन रेस वॉक का परिणाम रद्द कर दिया गया है। यास्मीन ने 42.195 किलोमीटर की स्पर्धा में 3:22:20 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन रेस के बाद उनके जूतों को लेकर विरोध जताया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीकृत जो फुटवियर नियम के तहत जांच के बाद उनका परिणाम डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी रद्द कर दिया। इसके बाद चीन की डंगजेंग कुंगजोंग को स्वर्ण पदक मिला। वहीं मा एल, जो चीन की ही खिलाड़ी हैं, उनको यहां पर रजत पदक मिला, जबकि जापान की उमेनो वाई को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं भारत की मंजू रानी, जो छठे स्थान पर थी इस रेस को खत्म होने के बाद, उनका पांचवा स्थान हो गया। हालांकि भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिलेगा।
1: दिस इज प्रिसाइसली व्हाई वी से ऑल ऑफ दीस अपडेट्स आर फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर यू next, just like this one, because now we're going to talk about the action that is continuing on the water as well, with Indian sailors competing across both men's and women's events and several races that are still underway. So starting with the men's skiff, India's Prince and Manu had a strong opening race, finishing second in race one, with Oman taking the top spot. Race 2 is currently underway, so there is still plenty to play for. And in the men's dinghy, Vishnu finished 9th in race 1 and 2 of the qualification series, with China leading the race and race 3 being delayed right now. Moving to the women's events, Harshita and Sheetal finished 4th in race 1 of the women's skiff, with Hong Kong, China taking the top position. Their race 2 is now underway as well. In the women's dinghy, Netra finished 6th in the opening qualification race, with Singapore at the top, and once again race 2 is currently running. And finally, in the mixed dinghy, Shraddha and Ravindra

0: Chandra finished 8th in the race 3 of the opening series, with Japan taking first place. Race 4 is now on, so we are still waiting for the latest positions from the Indian pair.
1: आज क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी। भारत बनाम अफगानिस्तान का एक मुकाबला होने वाला था जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। हालांकि भारत ने पिछला मुकाबला जापान से खेला था, आह और वाह का मुकाबला था, बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता था। आज उम्मीद की जा रही थी जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया मुकाबला। लेकिन अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की जो विजेता टीम होगी उससे सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये भी बता दूं भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंची, क्योंकि वरीयता और रैंकिंग के आधार पर फैसला किया गया कि भारतीय टीम को आगे पहुंचाया गया और भारतीय टीम सेमीफाइनल उतरेगी। और हां, एक और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी है।
0: While we are giving you these updates, there are some action which is coming in live from the squash courts, where the women's team match has started. The Pool C match number 3 between India and Japan has started, which is after their victory on China by 2-1 earlier today. So the next update that we will be coming to you in an hour, we will come with the results of the squash match, which is just starting right now. Until then, stay tuned to Akashwani. This is Vidhu Shivats with Mohammed Shahid Azmi, bringing you all the latest updates from Asian Games. See you in an hour. Thank you very much.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: Kanibaju, Kone Radio. Shuncho. 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi.
4: Asian Games update শুনছিলাম আমরা, এরপর শুনবেন গান্দরিয়া। আমরা রয়েছি গান্দরিয়া নিয়ে অম্বালিকা আর সোমা 107 FM Rainbow-তে।
5: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গান্দরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গান্দরিয়া, গান্দরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: Bazaar 26 Ayci Nagoya.
1: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है विदुषी वत्स से। चलिए आज इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं, स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। उमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है। भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहां अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है। तीसरे मैच पर सभी की निगाहें, क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरुबकोवा को हराकर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं। आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद ज़बरदस्त चल रहा है। अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज़्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँच गया है।
2: Absolutely, the events today are promising that thrill. They are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with a packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now after that we go with boxing, where Priya taking on her quarter final in the women's 60 kilogram category, and at 4 p.m. it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sunny in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the excitement still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abu Bakr listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000 meter final, where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4 into 400 meter relay team is scheduled today, followed by the women's 4 into 100 meter relay final as well. So from 2 p.m. onwards, it is going to be a packed sporting afternoon, evening, with squash and boxing leading us into what promises to be a massive athletic session.
1: जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही देखा जाएगा कि

0: ट्रैक एंड फील्ड पर जबरदस्त जोरदार आजमाइश देखा जाएगा, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आज जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, आज जो मेडल भारत ने जीते उसकी भी बात कर लेते हैं। शूटिंग में बात करेंगे, ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत में रजत पदक जरूर जीता, लेकिन हाँ क्या मुकाबला था विदुषी, जबरदस्त मुकाबला था, 5 मरतबा शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा था, शानदार मुकाबला हमने देखा। वहीं पर कुराश की बात करते हैं, पिंकी बलहारा महिलाओं की 78 किलोग्राम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार जरूर गई, लेकिन इसके बावजूद ने कांस्य पदक हासिल हुआ। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सोन को हराकर पदक पक्का कर लिया, यानी भारत का जो जीत का सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: Absolutely, it has been a morning full of intensity, composure and some truly memorable performances from our athletes. And as we just shared the schedule of the day that's upcoming, which is promising us excitement, a lot of excitement and thrill. With that, we will see you in our next update of the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi taking your leave right now, but see you real soon. Thank you.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ, नमस्कार, आदाब और खम्मा खड़ी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है तीन का तड़का, और मैं हूँ आपकी होस्ट और साथ में हूँ दोस्त भी, जी हाँ, आरसे रिंकू, और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि तड़का सिर्फ खाने में नहीं बल्कि जिंदगी में भी लग जाए तो जीने का मजा दुगना हो जाता है। और आज हमारे इस तड़के में बहुत कुछ है खास, क्योंकि आज हमारे तड़के में है प्यार, मोहब्बत और गानों से सजी एक हल्की सी मिठास। आइए बिल्कुल वक्त की बर्बादी नहीं करते हैं और सुनते हैं बढ़िया बढ़िया गीत जिसकी आप हमेशा इंतजार में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अलीशा चुनाव और जुबीन गर्ग की आवाज में बढ़िया सा गीत फिल्म क्रश 3 से।

0: जी हाँ दोस्तों, क्लियर क्रिस्टल वॉइस जो कि है अलीशा चिनॉय और जुबीन गर्ग की। वैसे साथ में जो मिक्स था ना, राजेश रोशन जी का म्यूजिक और बोल समीर अनजान के, वो तो सीधे सीधे रूह में नहीं बल्कि दिल में प्यार मोहब्बत और वो मीठा सा एहसास को एक साथ पिरोकर दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही दिल की धड़कनों को बढ़ाते बढ़ाते मोहब्बत की शायरी और सुरीली गानों का हम ऐसा ही तड़का सीधे लगाएंगे कि आपके दिल को वो छू जाएगा। तो चलिए आइए एक बार और सुनते हैं वाजिद, ममता और शर्मा और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत फिल्म दबंग 2 से।
1: Ready? One, two, one.

0: जी हाँ दोस्तों, तड़का का ये जोर है कि वाजिद ममता और साथ में श्रेया घोषाल ने वो धूम मचाई है कि आप भी सीटी मार ही रहे होंगे। वैसे समय हो गया है 3:15 का और अभी वक्त है हमारी सुनने का परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: जी दोस्तों, आज हम परियोजना प्रस्तुति में बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और सफल वित्तीय समावेशन मिशन है, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत देश के हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए की गई थी। ये योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस प्रकार देंगे कि योजना के मुख्य लाभ कुछ हैं, इसे आपको याद करने भी आवश्यक है। जीरो बैलेंस खाता, इस योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाने के लिए किसी न्यूनतम राशि या फिर मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में खाता धारकों को एक मुफ्त रुपए यानी कि डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसके बाद रुपए कार्ड के साथ 2,00,000 का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर मिलता है 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए, और इसके साथ खाता सही तरीके से चलाने पर 6 महीने बाद 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट लोन सुविधा मिलती है। पेंशन सब्सिडी और अन्य सरकारी योजना का पैसा सीधा खाते में DBT के माध्यम से आता है। कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है, ये खाता खुलवा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही कोई बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट है, तो आप उसे भी जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। ये खाता आप किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र यानी कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसके होने पर आधार कार्ड है, क्यों किसी भी दस्तावेज की और जरूरत नहीं होती। इसके बाद पैन कार्ड यदि उपलब्ध हो तो, या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा जॉब कार्ड। अगर आधार कार्ड ना हो तो इसके बदले ये दिया जा सकता है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियम है। रुपे कार्ड का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। 2,00,000 के मुफ्त दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए ये जरूरी है कि दुर्घटना की तारीख से पिछले 90 दिनों के भीतर रुपे कार्ड से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय लेनदेन ट्रांजैक्शन किया गया हो। एक परिवार एक लोन, 10,000 की ओवरड्राफ्ट यानी कि OD सुविधा पूरे परिवार में केवल एक खाते, अधिमानता घर की महिला के खाते पर मिलती है। ये योजना वर्तमान में भी पूरी तरह सक्रिय है और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार समय पर इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं को और भी बेहतर बनाए जाने की कोशिश कर रही है। यदि आप इस योजना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप बैंक पे जाकर या फिर इसके PMJDY योजना पे जाके आप इसे देख सकते हैं।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, ये तो गीत तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। ये गीत फिल्म आशिकी 2 से। वैसे तो आशिकी 2 के बिल्कुल सभी गाने बहुत ही खूबसूरत थे और ये तड़का में सुनाने वाले ही गीत थे। कहते हैं ना कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू

ही तो है जो दिल और दिमाग सिर्फ एक ही गाने को गाने के लिए चाहता है, और सुनने सुनते अरिजीत सिंह की वो आवाज, वो नगमे और साथ में तुलसी कुमार जी की आवाज, सच में ये बहुत ही सुंदर और सुरीली। आशिकी 2 का ये गाना रोमांटिक और साथ में दिल को झंझोरने वाली थी। वैसे तड़के के साथ 3:25:26 हो रहे हैं, तो चलिए गीतों का यह सफर जारी रखने का समय थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, सिलसिला थोड़ा भी कम हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर हमारे एक और जो एनसीईआरटी दिल्ली से कार्यक्रम जाता है उमंग, उसे सुनेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं सुनंदा शर्मा की आवाज में ये गीत।

जी दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनंदा शर्मा की आवाज में ये गीत फिल्म जय मम्मी दी से, और साथ में गीत जी लिखे थे तनिष्क बागची और जानी ने, और कंपोजर भी थे तनिष्क बागची और सुखे म्यूजिकल डॉक्टर्स के साथ। ये बिल्कुल ही तीन का तड़का के शो के लायक गीत था, और गीतों का सफर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन वो कौन सी दौलत है जाने तुम्हारे लफ्जों में जब बोलते हो तो हमारे दिल और धड़कने दोनों ही चले आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तीन के तड़के का शो यूं ही चलता रहे, लेकिन हमारे शो में 3:29 हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी अभी उमंग कार्यक्रम का समय आ गया है, इसीलिए रिंकू को इजाजत देने की जरूरत है। आप सुनते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए तीन का तड़का कार्यक्रम से। आप सुनिए उमंग, धन्यवाद।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी।
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
2: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
2: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3

0: वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वर मापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
4: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
4: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
5: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या क्या मसला है।
5: ठीक है,
2: बिल्कुल
5: भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
7: कैसे समाचार?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो

0: जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
1: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
0: अरे वो हमारा गौरव है,
2: हमारा गौरव है।
1: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
2: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जब तक सूरज चांद रहेगा,
4: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
1: भारत माता की
4: जय,
1: भारत माता की
4: जय।
5: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
6: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
5: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
6: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
5: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
6: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
5: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
7: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
8: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
7: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
8: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
7: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
8: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
7: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
8: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
7: थैंक यू सर।

0: में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी सहायता दीजिए। पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो, ओह, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ। ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली, जय मां।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की

0: इस सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
1: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
0: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
3: चिट्ठी, ला दिखा तो।
2: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
4: जिंदा है। अरे बहुत खुशी का बेटा, जिंदा है धन सिंह थापा।
0: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद,
5: सौम्या,
6: प्रसून
5: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
6: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। रेन

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट एक्शन रिजल्ट्स एंड मेडल मोमेंट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स। एंड व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन एथलेटिक्स। विथ्या रामराज हैज डन इट अगेन। विथ्या हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स एंड शी हैज डन इट इन स्टाइल, क्लॉकिंग अ पर्सनल बेस्ट विद 54.75।

0: in the final. But there is something particularly special about this medal. Vithya had won bronze in the very same event at the 2022 Games, and 4 years later, she is back on the podium, once again bringing home a bronze for India. A personal best, back-to-back podium finishes, and another fantastic moment in Vithya Ramraj's journey.
1: अब बात करते हैं एथलेटिक्स की, जहां से एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई। भारत की सीमा के ने महिला डिस्कस थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59.88 मीटर का थ्रो किया, लेकिन यह प्रदर्शन उन्हें पदक नहीं दिला सका। सीमा ने चौथा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गई। चीन की फेंग ने 63.69 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की ही जियांग ने 62.25 मीटर के साथ रजत पदक जीता। थाईलैंड की इनसेयांग ने 61.43 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। सीमा के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि उनका यह शानदार प्रयास पदक नहीं दिला सका। सबसे अहम बात बताता हूं आपको, 1998 के बाद पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रो में कोई भी पदक नहीं जीत पाए, यानी 1998 से लगातार जीतते थे, ये पहली बार है जब भारतीय महिलाओं ने पदक डिस्कस थ्रो में नहीं जीता। सीमा ने पूरी कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें पदक नहीं मिला।
0: But right now, let's bring you a big update that is coming in from the boxing ring, where Kapil Pokharia has stormed into the semi-finals of the men's 90kg category, and what a performance it was. Kapil faced Korea's Gichae Kim in the quarterfinal, and this was clear domination from the Indian boxer. He controlled the bout from start to finish, leaving no doubt with the judges, and came through with a unanimous victory. A commanding performance, a clear result, and Kapil Pokharia is now through to the last four. With that semi-final berth, Kapil has also guaranteed a medal for India in the men's 90kg category. Another Indian boxer, another semi-final, another medal confirmed.
1: 400-meter hurdles ki baat karte hain, भारत के संतोष कुमार तमिलरासन ने पुरुषों के 400 मीटर हर्डल्स फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन किया, बिल्कुल अफसोसनाक प्रदर्शन था। संतोष ने 49.95 सेकंड का समय निकालते हुए 8 खिलाड़ियों में 7वां स्थान हासिल किया। पूरी रेस के दौरान संतोष पदक की दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कतर के बासिम हेमेदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.82 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
0: Let's also bring in some good news to balance it. That is from the Indian men on the squash courts, who has completed a 3-0 victory over the Republic of Korea in their Pool A encounter, with all three Indian players delivering straight games wins. Starting from Velavan Senthil Kumar, then a clear domination by Abhay Singh, and then it was Veer Chautrani's turn to put the finishing touch on the contest, and he completely dominated, winning all three games. So there was absolutely no way back for Korea as India wrapped up the team tie 3-0.
1: हॉकी की बात करते हैं, भारत बनाम बांग्लादेश जबरदस्त मुकाबला। हालांकि भारत ने बढ़त बना ली है, पहले ही क्वार्टर में भारत ने अभिषेक लाकड़ा के गोल की मदद से बढ़त बनाई। हालांकि अभी 1-0 का स्कोर है भारत के पक्ष में, दूसरा क्वार्टर यहां पर जारी है। देखना यह होगा कि क्या यहां भारत कुछ और गोल करता है, दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल भारत बांग्लादेश पर बढ़त बनाया हुआ है।
0: Now a tough result coming in from the athletics track, where Avinash Sable has finished fourth in the men's 3000-meter steeplechase final, narrowly missing out on a place on the podium. And these Asian Games, as he is into Asian Games as defending champion, having won gold in the previous edition, but this time there will be no medal for India in this one, which is clearly disappointing. But the heat is about to turn up in the athletics arena with three high-powered finals coming for us, with Murli Sri Shankar and David in men's long jump final, with Gulveer and Yunus in the men's 1500 meters final, and the men's javelin throw with Rohit Yadav and Yashveer Singh coming for us.
1: जी बिल्कुल, अगले एक घंटे में क्या होगा अगली अपडेट में जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी ठीक 5:30 पर।
2: Shuncho 107 FM Rainbow Shat Shure Sharadi Shat Shure Sharadi Shuncho Cafe Kolkata Cafe Kolkata 107 FM Rainbow Te कैफे कोलकाता। कैफे कोलकाता।

0: KBS 아이지 나고야.
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की विशेष अपडेट में. घड़ी की सुई में ठीक 5:30 हुए हैं. बताते हैं इस घंटे की खास अपडेट. एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए एक और शानदार खबर आई है. पुरुषों की 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया. गुलवीर ने 3:36.72 सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की. बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इज़ावा ने 3:36.35 सेकंड से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया. भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 सेकंड के साथ नवे स्थान पर है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग बदल दिया है.
2: एंड नाउ वी हैव अनदर एथलेटिक्स मेडल अपडेट लाइव कमिंग इन फ्रॉम द वुमेन्स 5000 मीटर्स फाइनल. पारुल चौधरी हैज डन इट अगेन. शी हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स 5000 मीटर्स, एडिंग अनदर मेडल टू व्हाट हैज बीन अ रिमार्केबल एथलेटिक्स कैंपेन फॉर द कंट्री. शी हैज ऑलरेडी स्टैंड आउट अमंग मेनी परफॉर्मर्स फ्रॉम इंडिया इन द वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज मेडल एज वेल. एंड यू नो देयर वाज plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again. Another medal from athletics.
1: हॉकी की बात कर लेते हैं विदुषी. यहाँ पर भारत शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी है. अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है. यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है, उन्होंने कमाल किया है. 27, 40 और 45, ये मैं मिनट बता रहा हूँ, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया. लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने, 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था. युवराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था. उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया. शिनालन लाखलाड़े ने 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था. अभी इस वक्त भारत 8, बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.5 मिनट का समय बचा है.
2: We also have 2 athletics finals underway right now with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sri Shankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Patturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt, recording 7.70. The fourth one recording 7.45. Meanwhile, China's Shi Yang has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
1: बिल्कुल, रोहित यादव और यशवीर सिंह, इन दोनों खिलाड़ियों ने नीरज चोपड़ा की कमी महसूस अब तक नहीं होने दी. रमेश पतिराजे पीछे चल रहे हैं. रोहित यादव पहले स्थान पर हैं, 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर. वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंककर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं. अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर ऊंट किस करवट बैठता है, अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: सुनचो 107 FM रेनबो, शांत सुरे शारद, शांत सुरे शारद.
4: सुनचो कैफे कोलकाता 107 FM रेनबो ते कैफे कोलकाता.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी एंड वी हैव ह्यूज एथलेटिक्स अपडेट कमिंग इन लाइव फ्रॉम द एशियन गेम्स। इंडिया हैज वॉन मोर देन 300 एथलेटिक्स मेडल एट द एशियन गेम्स एंड इट इज मुरली श्री शंकर हु हैज क्रिएटेड दिस लैंडमार्क मोमेंट। श्री शंकर विंस सिल्वर इन द मेन्स लॉन्ग जंप, प्रोड्यूस्ड अ बेस्ट जंप ऑफ 8.07 मीटर्स टू फिनिश विद द silver medal, successfully defending the silver medal he won at the previous games. A two-time Commonwealth Games silver medalist once again delivers on this big stage. But this final also had a difficult moment for the Indian star. Sri Shankar had to retire from the competition after suffering an injury during his fourth attempt. Still, that 8.07 meter effort that had already done the job, securing another Asian Games silver. But this is not all. The Indian performance from athletics does not pause here. There is more from medals at this moment that we are excited to share.
2: बिल्कुल, भारत को एक ही इवेंट में दोहरी सफलता मिली, दोहरी खुशी मिली है। मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया। यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं रोहित यादव का आखिरी प्रयास फाउल जरूर गया, लेकिन उन्होंने 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में कर लिया। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल रुमेश पथिराजा ने जीता। उन्होंने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का थ्रो करके जो शानदार उनका थ्रो था स्वर्ण पदक दिला गया। हालांकि उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में

0: 88.33 की दूरी नाप ली थी, वहीं उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था। लेकिन भारत के लिए यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो में जो उम्मीद की जा रही थी नीरज चोपड़ा की, हालांकि कमी जरूर रही, अगर होते शायद गोल्ड तक जाते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने दो पदक जीतकर डबल खुशी जरूर दी है विदुषी।
1: Absolutely, the action is unfolding right now. The medals are coming in, records are being broken, and India is making its presence felt across athletics and boxing as well. To take a quick look at some absolutely amazing headlines we have had in the last hour and a half, Parul Chaudhary does it again, bronze for India in the women's 5000 meters. Vithya Ramraj creates history with a bronze medal and a national record in the women's 400 meter hurdles. She has gone past P.T. Usha's 42-year-old national record. Gulveer Singh adds another silver, and Kapil Pokhriyal storms into the semi-finals of the men's 90 kilo category. One more update is that Pooja has qualified for the women's 800 meter final after finishing 5th in her heat.
0: बिल्कुल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं, एक तरफा अंदाज में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, 10-0 से हराया। बता देते किसने किसने गोल किया, हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल स्कोर किया 27वें, 40वें और 45वें मिनट में, लेकिन खाता खोला था अभिषेक ने 3रे मिनट में गोल करके, वहीं सुखजीत सिंह ने 32वें, शिलानंद लाकड़ा ने 44वें और 45वें मिनट में, संजय ने 59वें मिनट में, जबकि जो ताबूत में आखिरी कील था उसे ठोका मनदीप सिंह ने 60वें मिनट में। इस तरह बांग्लादेश को चारों खाने चित करते हुए भारत ने जीत दर्ज कर ली हॉकी मुकाबले में।
1: Absolutely, more fantastic news this hour. As we say, these games are with twists and turns. This one comes from India men's 4x400 meter relay team, which has now headed into the final. The Indian quartet of Dharmveer Chaudhary, Rajesh Ramesh, Manu, and Jay Kumar has stormed into the final after clocking 3:01.49 in heat 2. And this is the big headline: that is the fastest time across both heats. So India not only qualifies, but does it with the quickest time of the entire heats. And right now, there is more relay action underway. The women's 4x100 meter relay final has just started. It's just about to take our attention to the track and see how India is doing in this one. India is making its presence felt on the track and the momentum continues.
0: बिल्कुल, उम्मीद करेंगे यहाँ भी भारत को पदक मिले, कुछ लम्हों बाद decide हो जाएगा, फैसला हो जाएगा यहाँ पर किसके खाते में पदक जाता है। फिलहाल हमारा समय समाप्त हो रहा है इस घंटे की अपडेट के लिए, अब मिलेंगे आपसे ठीक 7:30 पर, तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। सुरों की महफिल।
1: जी हाँ, नमस्कार, आदाब दोस्त, मैं हूँ रिंकू। आज रिंकू, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर हमारे सबसे पसंदीदा शो छायालोक। दोस्तों, छायालोक एक ऐसे शो है जिसमें हम सभी सुरों की महफिल पे खो जाते हैं। जी हाँ, एक शो है सुरों का जिसमें हम बातें करते हैं बहुत सारे गीतकारों की, जिसमें हम बातें करते हैं बहुत सारे गीतों की, और जिसमें हम बातें करते हैं बहुत सारे दिल को छू लेने वाली शेरों शायरी और फिल्मों की। आइए शुरुआत करते हैं उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म गुप्त का ये गाना। वैसे दोस्तों, दौड़ती भागती इस जिंदगी में हर इंसान सुकून की तलाश में है, पर कमबख्त ये सुकून तभी तक अधूरा रहता है जब तक इसे सुरों का साथ नहीं मिले। जी हाँ, और सुरों का साथ देने के लिए तो हम है ना आपके साथ सुरों की महफिल पे। तो चलो हम भी आपको सुरों की महफिल के सुर यूं ही नहीं पिरोते, आइए कुमार सानू की आवाज में सुनते हैं एक और गीत।

जी हाँ दोस्तों, कुमार सानू की आवाज में फूल और कांटे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत। वैसे तो 90s की दशक की ये गीतों की जो शरमार थी ना, वो हम सबके जज्बातों और सुकूनों को एक साथ झंझोर कर रख देती थी। वैसे तो दौड़ती भारती ये जो जिंदगी है, ये भागती हुई से जिंदगी को हम रोकने के लिए ही तो सुरों की महफिलों को सजाते हैं। वैसे कहते हैं जहां शब्द थक जाते हैं वहां से ही संगीत का सफर शुरू होता है, और हमारी इसी महफिल का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों यहाँ कोई भी जल्दी नहीं है, बल्कि सुरों की महफिलों का एक सिलसिला है। आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में ये गीत, आपको शायद पसंद आए।

जी हाँ दोस्तों, दिल का करार तो जाएगा ही जब सोनू निगम और श्रद्धा पंडित अपनी आवाज में गाएंगे ये संघर्ष फिल्म से ये गीत। वैसे संघर्ष में आशुतोष राणा का जो जबरदस्त किरदार था वो भुलाया नहीं भूलता। इस गीत के बोल भी भुलाए नहीं भूलते, समीर के लिखे हुए गीत थे और संगीत दिया था जतिन ललित ने। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में धीरे धीरे समय अपने ऊपर हावी हो रहा है, 7:23 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी के साथ मैं आपको अच्छे अच्छे गीत भी सुनाना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं आज रिंकू के साथ 107 FM रेनबो पर हमारा प्यारा पसंदीदा शो छाया लोग, जिसमें सुरों की महफिल। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत।

यहाँ दोस्तों ऐसे कोई अगर देखेगा तो अपना तो दिल दीवाना हो ही जाएगा। वैसे दोस्तों कहते हैं सुरों की महफिलों के साथ ये तमाम जो संगीत है और गीत है और जो समय है एक साथ रुक जाती है। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि महफिलों में आपको हमेशा रोमांचक गीत ही सुनाए। वैसे क्या बात है, वैसे इस गीत ने जैसे दिल के तार ही छेड़ दिए हैं। वैसे हमारा अगला गीत भी वैसा ही है, शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आइए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अब सुन रहे थे शबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। ये गीत फिल्म शोला और शबनम से अनजान के लिखे गीत थे और बपी लहरी से संगीत दिया था वैसे अनुराधा पौडवाल और मनहार उदास की आवाज में। एक और गीत आपके लिए सुनते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही धुनों से सजा है हमारे ये सुरों का महफिल। वैसे आप सुन रहे थे समीर और नदीम श्रवण के संगीत से सजा हुआ ये गीत फिल्म सड़क से। गीत गा रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहार उदास। दोस्तों ये 90s के वो दौर थे जिसमें ऐसे ऐसे धुनों का संचयन हुआ था जो आज भी बरकरार है जी। और स्टूडियो की घड़ी में भी वक्त बरकरार बढ़ता जा रहा है। 7:47 हो चुके हैं और आप मेरे साथ बैक टू बैक दो का गीत सुनिएगा। चलिए सुनते हैं, पहले हम लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये सुन लेंगे ये गीत। उसके बाद हम सुनेंगे अमिताभ और अनुराधा पौडवाल, बिपिन सचदेवा की आवाज में। आइए सुनते हैं।

दोस्तों इस गीत के साथ आप रिंकू को इजाजत भी देंगे क्योंकि इसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आरजे रविंद्र कौर आपके सामने होंगी और हमारे साथ होंगे वो गीतों का सफर और सुरीली महफिल। तो ये गीत सुनते रहिए, साथ में सुनते रहिए आपके बैक टू बैक अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में दूसरा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत फिल्म बेटा से। और इसके पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में पत्थर के फूल फिल्म से। तो सो इसी के साथ रिंकू को इजाजत देना होगा आपको, और अगले अंक यानी कि आरजे राजवेंद्र के साथ आपके साथ होंगी, वो रूबरू करेंगी एफएम की सुरों की महफिल का दूसरा हिस्सा। तब तक के लिए मुझे नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। छाया लोग

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की खूबसूरत आवाज में फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला और मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ, इंदौर में उनका जन्म हुआ आज ही के दिन 1929 को। और संगीत की पहली शिक्षा उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से मिली थी, जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटककार थे। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले लता मंगेशकर का ही गाया हुआ एक खूबसूरत नगमा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए, और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

8:25 और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में फिल्म कभी खुशी कभी गम से आपने टाइटल ट्रैक सुना। अपने 7 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों सुरीले गीत गाकर दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उनकी सुरीली और जादुई आवाज आज भी हर भारतीय की स्मृतियों में जीवित है।

8:30 और फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: आठ बजकर 31 मिनट और आज रणबीर कपूर का भी है जन्मदिन, तो पूरे आकाशवाणी की ओर से, पूनम की ओर से रणबीर कपूर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। रणबीर कपूर भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय प्रतिभाशाली और वर्सेटाइल अभिनेताओं में से गिने जाते हैं और इनसे जुड़ी बातें मैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले इनकी ये फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:35 और बता चुकी हूँ कि जन्मदिन आखिर है किसका। जी हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में ये हीरो बनने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे बताऊं आप सबको? इन्होंने फिल्मों में जो शुरुआत की थी वो सहायक निर्देशक के रूप में की थी, अभिनय में कदम रखने से पहले। और उन्होंने संजय लीला बंसाली के साथ फिल्म ब्लैक जो कि आई थी 2005 में, उस फिल्म के निर्देशन में हाथ बटाया था। और साल 2007 में संजय लीला बंसाली की ही फिल्म सांवरिया से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनके अभिनय को काफी सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिलहाल 8:36 और एक और खूबसूरत सा नगमा इन्हीं के फिल्म से। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

रणवीर ने अपने करियर में हर तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं। उनके सबसे सफल और लोकप्रिय फिल्मों में रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, ए दिल है मुश्किल, संजू ब्रह्मास्त्र और एनिमल शामिल हैं। तो इसी बात पर एनिमल फिल्म से खूबसूरत सा नगमा हो जाए।

8:57 और पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई, टाटा बाय।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा, लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर।

0: लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरेना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमीफाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मो सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Corey Kang Yoon Siu. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shootout. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अभी यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का

0: आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
1: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
0: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
0: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंग स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: তুমি শুনছো বাংলা ও হিন্দি গানের কাউন্টডাউন শো রেনবো টপ 20 only on 107 FM Rainbow. Rainbow Top 20. Rainbow Top 20.

जो भी देखे यही पूछे है ये किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।